0: तो नहीं।
1: एक पारे तो मैं लस्सना आदर मातक कागे दहाद दी हित दुआने आती थे अट मोहन तक टवाते सुंदर बावसे नेहा सा आदर आडवा कुने ने तादा बर हित का आदर वांतियों ने मामा ए उन्हों मुझे मांग आदरे अने मंदा तरंगा ताओ मत ए सुंदरत्वे मात मातक याक वितराई मांग लक्माली